जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

0: Non-stop de allerbeste hits op Radio SBS.
1: तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

जाऊंगी, तू ही तो है। काश तुझे खबर होती, ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं, जिंदगी से भागकर कहां जाऊं।

सभी श्रोताओं की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, आज शुक्रवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह पेश किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। जो बीमार या लाचार है, भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है, शादी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुनवालो, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनवालो की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन अभी आपने सुना। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है। अनहेल खुर मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। शुक्रवार का दिन है, माता जी का दिन है, तो आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। चले अगला भजन की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आप सुनते ही रहना सोनू निगम की आवाज में।

निगम सोनू निगम की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। और साथ ही साथ सुनने वालों, दुनिया की कोने कोने में सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है। चले प्रोग्राम में एक संतोषी माँ का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में ये भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं आज की इस भजन।

निगम की आवाज में अभी आपने सुना आसरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास भजन जो पेश की गई है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दुनिया के कोने कोने में और दुनिया के कोने कोने में भी इंटरनेट रेडियो के जरिए हर एक इंटरनेट रेडियो के जरिए भी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

प्रति सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा चालीसा की ओर। श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से।

सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है और हमारी सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: कभी कभी प्यार में कभी कभी फिल्म का नाम महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: हाँ एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
2: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

सानु जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

रेडियो एसपीएस के जरिए फिल्म प्यार जिंदगी है अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी है। आशा भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो एसबीएस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सबीर कुमार एंड अलका याग्निक प्रोग्राम में

थैंक यू SBS की। सर ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश किया है। चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

में जाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट में इसके जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज में ये गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड के प्रोग्राम में

एक बार फिर से मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन है, 22 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बाहर का मौसम की ओर देखा जाए, खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम, गर्मी सा मौसम बस होने वाले है। और सुनने वालों आपको खबर दिया जा रहा है, काफी लंबी वीकेंड होने वाले है, पिंक्स्टर वीकेंड। और इस पिंक्स्टर वीकेंड में भी खूबसूरत सुहाना मौसम होगा, टेम्परेचर काफी ऊंचा रहेगा, कहीं कहीं देर तक खराद 30 डिग्री बस होने वाले है। सभी को शुभ सुबह शुभ दिन, गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को स्वागत किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। आज सुबह की वक्त काफी सुनने वालों बस तार किया है, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। सभी जो रेडियो SBS का ऐप के जरिए खुद मोर्ख भेजा है, गुड मॉर्निंग भेजा है, आप सभी के लिए भी खुद मोर्ख बस पेश किया जा रहा है, गुड मॉर्निंग। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना, 9:11 वेटेड हो चुका है। यहाँ से प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर, लेकिन पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी के लिए गर्मा गर्म कॉफी चाय बस पेश किया जा रहा है, और खास तौर पर आपके लिए, आप जो हमेशा और हमेशा हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, तो आपके लिए स्पेशल कॉफी, गर्मा गर्म लकर मीठा मीठा कॉफी बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में पहला गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, और हमारी बहुत सी सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, सुनते हैं। सभी सुनने वालों जो देश विदेश में इस प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है।

कुकीज के आवास में फिल्म दीवाना का गीत पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में लता जी के आवास में फिल्म दो बदन का ये गाना पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बन कुमार और गीता दत्त की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था फैशन। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा।

किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था प्रेम कहानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पुरानी नगमे, आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में चले मिलकर सुनते हैं ये गाना फिल्म प्रोफेसर

ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई पत्थर की सनम फिल्म का नाम, मनोज कुमार का खास एक्टिंग किया हुआ गाना इस प्रोग्राम में पेश की गई द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS जरिए, जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में।

सभी सुनवाओं की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में एक काफी पुरानी

रेडियो SBS के जरिए ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना शहरी उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। 100 बरस की जिंदगी से गाना कबूल और इसी तरह से मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में गाना पेश की गई। चले प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम सच।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना महेंद्र कपूर के आवाज में पेश किया जा रहा है आज के इस प्रोग्राम में। जब ये पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, तो हम आपको ले चलते हैं महेंद्र कपूर की ओर।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मुकेश की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम संगम। संगम फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, इतनी सी बात है गाना कबूल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

प्रेम अगन के बाद फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

Udit Narain और पूर्णिमा की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। प्यार कोई खेल नहीं है, उसी फिल्म का ये गाना अब की बार पेश किया जा रहा है।

फतेह अली खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में कुमार सानू और साधना सरगम की ओर हम आपको

0: खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल के साथ बेला सेंडे और साथियों की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। पहली फिल्म का नाम है
1: जब चलू तो चल चल चल के अंगना रे।

रेडियो SBS की जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई कुमार सानू और अलका जी की आवाज में आसराव मीट है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS की जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गए है। चले गाना आज के प्रोग्राम में बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक खूबसूरत सा गाना होगा जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में अरिजीत सिंह के आवाज में पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बज प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम होगा आपकी बार अभिजीत और आउट प्रोग्राम में

अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए प्रोग्राम में श्रेया और सोनू निगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश जी की आवाज में एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप हर एक सुनने वालों को खबर किया जा रहा है, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं अपना हर एक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी प्रोग्राम में

श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पीस की गए। रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। आन मिलो सजना, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी एंड लता, प्रोग्राम में होगा

सजना, फिल्म का नाम मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी और लता की आवाज में एक और काफी खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम है आस पास, मोहम्मद रफी एंड लता प्रोग्राम में।

के आवास में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। कुछ खूबसूरत नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे आपके बार किशोर एन लता जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है एड फिल्म आ गले लग जा, फिल्म का नाम है आ गले लग जा। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर प्रोग्राम में

किशोर एन लता जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना बस सबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिर से होगा किशोर एन लता मंगेशकर और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम आराधना। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, एक रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम जो सालों से पेश किया जा रहा है और सालों से हजारों हजारों सुनने वालों बस रोजाना रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, जो हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से बस सालों से पेश किया जा रहा है और वो भी यूट्रेख्ट

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशुलि करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमागल, दिस इज यू आरजे अंशुलि करमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

रेडियो बेस के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहाल।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यू लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम, ये सफर कटेगा कैसे जो अभी से डर गए तुम, बस अयोध्या फिल्म हमको दीवाना कर गए। अयोध्या फिल्म फना कोमदा खसंग दौर कैलाश खेर एंशान चांद सिफारिश जो करता हमारी।

तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो

अभी अभी आपने सुना के की आवाज में फिल्म जिस्म दो से, और अब आप सुनिए फिल्म शोर इन द सिटी से श्रेया घोषाल और तोची रैना की आवाज में साइबो।

गुलाबी स्काई फिल्म द स्काई इज पिंक से आपने सुना। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए दिलविल प्यार व्यार से। हरी हरन और अलका याचनिक की आवाज में आप सुनिए तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं।

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो। दित प्रार्थक लीजिए इस गीत को श्रेया घोषाल एंड कम आउट द फिल्म द बॉडी। एंड हमने सुना है इस फोहत लीजिए फिया रेडियो SBS आउट द फिल्म मेरे यार की शादी है। खजौदर उदित नारायण अलका याचनिक सुदेश भोसले एंड जसविंदर ने रूला इस दित लीजिए इन प्रोग्राम गीतों के लहर।

नीचे इन प्रोग्रामा गीतों के लहर इस बनी बनी बनी मैं प्रेम की दीवानी बनी इस द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ, गाएक करीना कपूर एंड अभिषेक बच्चन।

गुरनालो इश्क मिठा इस आर द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। En gezongen door Lata Mangeshkar komt uit de film Arzu. Ajir uthkar ab kahan jaiyega? Jahan jaiyega, hame paiyega.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इज uit de film Fana en uit de film Ruhi Afsa is het volgende liedje via Radio SBS. Kiston.